एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि आज रविवार है। तदनुसार 19 जुलाई 2026 इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की।

0: वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामूल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
2: नैतिकता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिससे हमारा व्यक्तित्व चमकदार बन जाता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन ईमानदारी और नैतिक गुणों के सहारे हम साफ और सरल जीवन जी सकते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो महसूस होगा कि ईमानदारी और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। नैतिक गुण हमें भ्रष्ट होने से बचाते हैं। जब मनुष्य पर लालच हावी होता है तब नैतिक मूल्य उसे बाधा जैसे लगते हैं। वास्तव में लालची व्यक्ति अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जब बुराई हावी हो, क्रोध का उफान हो, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। रास्ते में पड़ी हुई कोई वस्तु या पैसा लौटाकर हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। जो हमारा नहीं है उसे हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? जब पड़ोसी भूखा हो और हम स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत उड़ाएं, ये उचित नहीं। एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों को चरण स्पर्श या आदर देना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्ट आचरण और बुरी आदतों से दूर रहना उच्च नैतिक आदर्श हैं। इनका अभ्यास समाज व परिवार में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। बच्चों में संस्कार परिवार से ही आते हैं, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का आदर व सम्मान करते हुए सदैव अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, तभी परिवार के छोटे सदस्य ऊंचे नैतिक मूल्यों का पालन कर सकेंगे। इसके लिए माता पिता के साथ साथ विद्यालयों में भी नैतिक मूल्यों के पाठ नियमित पढ़ाने चाहिए।

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

चंद्रू आत्मा और साथियों की आवाज में अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: समूह स्वरों में अभी आप देशगान सुन रहे थे। इसके साथ ही वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603।
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:30 होने को है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दे। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:40 होने को है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात। छह बजकर 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत जय सिंह दायमा व साथियों की आवाज में। सात बजकर 7:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का। आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ जलसे का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। राजस्थानी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 पर।

Pues. प्रातः 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से। प्रातः 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट बाय NSD पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती नी बात।
1: कार्यक्रम हमारा हमारा सब भाई ने बहना ने सोरा थी की रीता बहन ने राम राम राम राम। आज सोरा ऊपर आप जैविक खेती चर्चा करो कि पहले तो ये हमसे की जैविक खेती हो है। जैविक खेती ये पद्धति है जिनमें रासायनिक खादों कीटनाशकनों निजे जीन परिवर्तन करेला जो बीज मन ले संकर बीज ही एनो उपयोग अपने नहीं करो। बीजी बीजी रासायनिक दवाई है एनो भी प्रयोग अपने नहीं करो, बल्कि प्राकृतिक रूप थी की प्राकृतिक संसाधन थी की जिम की गोबर की खाद है कंपोस्ट है हरी खाद है निजे जैव उर्वरक है इनो उपयोग करी ना अपने खेती करो। तो आवी प्रकार निजे खेती करो इन्हें अपने जैविक खेती करो। जैविक खेती है कुछ मुख्य सिद्धांतों पर काम करे जिम के आड़ में अपने बात करी है कि प्राकृतिक संसाधन नो उपयोग करो। इन थी की ये था कि मिट्टी निजे उर्वरकता है ये बनी ले रहे। तो अनेक सिद्धांत भी है कि मिट्टी ने जी उर्वरक क्षमता है इन्हें बनावी राखो। बीजू पर्यावरण संतुलन ने बनावी राखो। रसायन थी की

सतगुरु जी समझावे ओ थाने धन गुरु जी समझावे सतगुरु जी समझावे ओ थाने

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत जब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जिसका शीर्षक है नई शिक्षा नीति और रोजगार, डॉक्टर चंद्रलेखा जोशी की आवाज में।
1: नई शिक्षा नीति और रोजगार 29 जुलाई 2020 से वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और इस शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे बहुत से कारण रहे। पूर्व की सरकारों ने 1968 व 1986 की शिक्षा नीति लागू की थी। कोई चीज जो

वर्षों से चली आ रही है तो उसमें परिवर्तन की जरूरत होती है, उसमें नए सुधार की जरूरत होती है। पूर्व की जो शिक्षा नीतियाँ थी उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन की भी जरूरत पड़ी थी, और इसी उद्देश्य को लेकर वर्तमान सरकार ने जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, उस समिति ने मई 2000

राष्ट्रीय शिक्षा नीति रखा गया है। इस पूरी शिक्षा नीति में राष्ट्र को सर्वोपरि रखा गया है। प्रत्येक इसमें जो कार्यक्रम तय किए गए हैं वो राष्ट्र को लक्ष्य रखकर किए गए हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति को जो नाम दिया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिया गया है। आजादी के बाद जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन करने थे, वो परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं हुए थे। कहीं न कहीं ऐसी चीजें जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से प्रेरित थी और कई ऐसे प्रावधान थे जिसमें लग रहा था कि अब एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें भारतीय परंपरा और ज्ञान को महत्व देते हुए जो भारतीय बच्चे हैं उनके अंदर स्किल व रोजगार से संबंधित उनकी संभावनाएं बढ़े, तो इसी बहुआयामी उद्देश्यों के लिए इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया और इसे भारतीय परंपरा और वर्तमान दुनिया की जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य तकनीकी शोध है उन सभी का समावेश इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। जो 1986 की नई शिक्षा नीति थी वह 10+2 के पैटर्न पर आधारित थी, जिसमें 10th तक तो बच्चा एक ही पैटर्न पर पढ़ेगा और 11th और 12th में वह विषय का चयन करेगा। जो शिक्षा नीति है वह 5-3-3-4 के फार्मूले पर आधारित है। बच्चे के जीवन के जो प्रारंभ के 5 वर्ष है वो उसके 3 वर्ष से प्रारंभ होते हैं। 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी उसे फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत इसे भी 3 वर्षों में बांटा है। 3 से 6 वर्ष बच्चा प्री स्कूल, जिसमें खेल कूद वगैरह, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इस तरीके से वह 3 वर्ष में आनंददायी शिक्षा ग्रहण करेगा। इसके लिए बच्चे का कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी, बच्चा पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। बच्चा खेल कूद करेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अब बच्चा स्कूल जाने की जिद करेगा, 3 से 6 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करेगा, वह आनंददायी शिक्षा ग्रहण करेगा। बच्चे को शिक्षा बोझ न लगे, वह खेल खेल में मनोरंजन के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा और टीचर को भी यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चा आनंददायी शिक्षा ले। इन 3 वर्षों में उसे कोई परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। 3 से 6 वर्ष का तो यह कार्यक्रम हुआ, अब बच्चा 6 से 8 वर्ष में वह कक्षा 1st और 2nd में प्रवेश लेगा। अब कक्षा 1st और 2nd में भी कोई परीक्षा नहीं होगी, खेल कूद के माध्यम से उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाएगा ताकि बच्चे को परीक्षा के नाम का कोई भय न हो। इस फाउंडेशन कोर्स में मुख्य रूप से यह बल दिया गया है कि खेल कूद, मनोरंजन व कई ऐसे तरीकों से शिक्षा दी जाए जो टीचर को ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाएंगे। बच्चा यह 5 वर्ष सफलता, खुशी एवं उल्लास पूर्वक पूर्ण करें। इसी स्कूली शिक्षा में दूसरा स्टेज है जिसको प्री प्रिपेशनरी या प्री प्रोपेटरी स्टेज कहा जाता है। अब 3 वर्ष की बात आती है जिसमें बच्चा 8 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा 3rd, 4th और 5th में पढ़ेगा। इसमें परीक्षाएं होंगी। इन 3 कक्षाओं में उसे

कर सकता है, इसीलिए उसे कोई बाध्यकारिता नहीं रहेगी। अधिक से अधिक कोशिश यह रहे कि 3 से 5 कक्षा में मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाए। इन कक्षाओं में उसकी परीक्षाएं जरूर होंगी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके बाद मिडिल स्टेज आती है जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की है। इस स्टेज में बहुत युगांतकारी परिवर्तन किया गया है। पूर्व में बच्चे को सभी विषय पढ़ाए जाते थे, इस बार भी पढ़ाए जाएंगे। उसके गणित, साइंस, सोशल साइंस के भी सारे विषय होंगे, परंतु इस बार जो बड़ा परिवर्तन हुआ है और जो विकसित देशों से भी अपनाया गया है, इस स्टेज में बच्चा इंटर्नशिप

0: इंटर्नशिप भी कर सकता है। इंटर्नशिप के दौरान वह सर्टिफिकेट लेकर आएगा, उसके मार्क्स टीचर को सबमिट करने हैं और इसमें संस्कृत भाषा को भी सीखने पर बल दिया गया है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज भी आती है जिसमें बच्चा 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई करता है और इस स्टेज में जो परिवर्तन किया गया है वह मुख्य रूप से यह है कि पहले सामान्यतः यह होता था कि बच्चा कला वर्ग, साइंस वर्ग, वाणिज्य वर्ग का होता था, परंतु अब बच्चा 9th क्लास में आकर अपना विषय चुनने में स्वतंत्र होगा। वो चाहे उस विषय का चयन कर सकता है, अगर वो चाहे तो मैथमेटिक्स के साथ भूगोल भी पढ़ सकता है, चाहे तो मैथमेटिक्स के साथ वाणिज्य का विषय भी पढ़ सकता है। बच्चे के पास 9th से 12th का जो कोर्स रहेगा उसमें बच्चा स्वतंत्र रहेगा, मल्टी चॉइस उसके पास रहेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस उसके पास रहेगी। यह भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बच्चे की जो रुचि के विषय है वह पढ़ सकता है। और बड़ा परिवर्तन यह है कि जो 4 चरणों में अर्थात वर्ष भर में 2 सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी, अर्थात 4 वर्ष में लगभग 8 बार परीक्षाएं होंगी। पहले यह होता था कि वार्षिक परीक्षा होती थी, बच्चा साल भर में परीक्षा के 1 महीने पढ़ता और परीक्षा दे देता था, लेकिन अब सेमेस्टर परीक्षा होने से बच्चा पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेगा। उच्च शिक्षा की बात है तो इसमें भी कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। पूर्व की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें हम 3 साल का ग्रेजुएट का कोर्स करते थे, बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री प्राप्त करते थे। इस पूर्व की शिक्षा नीति में कई तरह की समस्याएं आती थी, लेकिन इस शिक्षा नीति में मल्टी डिसिप्लिनरी व्यवस्था लागू करके समस्याओं का निराकरण किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी में बच्चा जो चाहे वो विषय लेगा, उसके सामने सारे विषय खुले हैं, यह कोई बाध्यकारिता नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे साइंस है तो उसके साथ वह आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है। और दूसरा यह है कि पहले यह रहता था कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करने के बाद कॉलेज छोड़ देता था तो 2-3 साल का गैप पड़ जाता था, सेकेंड ईयर की पढ़ाई नहीं कर पाता था, आगे फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर ली और बाद में काफी साल बाद वो एडमिशन लेना चाहता था तो यह संभव नहीं हो पाता था। यह हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति थी, किंतु हमारी 2010 की शिक्षा नीति में एग्जिट और एंट्री दोनों की सुविधा दे रखी है। अब बच्चे के पास मल्टीपल चॉइस है। इस तरह नई शिक्षा नीति अगर कहे तो रोजगार परक है। इसमें बच्चे को 6th क्लास से अगर बच्चा इंटर्नशिप में जाता है तो वो मानो कि 6th क्लास से वो आत्मनिर्भर हो गया है, उसके पास रोजगार के बहुत से अवसर सुलभ हो गए हैं।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
2: पुण्यतिथि आज हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं नीरज जी की चुनिंदा रचनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नीरज जी के ही लिखे गीत के साथ। एसडी बर्मन की है तर्ज, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं और फिल्म का नाम शर्मिली।

0: यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा,
0: यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।
3: सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अगला गाना हमने लिया है बनारसी ठग, इस फिल्म से उषा मंगेशकर।

आपने ट्यून किया भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम ही रही प्यार के। लीजिए अब सुनिए नीरज का लिखा और एस डी बर्मन का संगीत बद्ध क्या गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम गैम्बलर।

0: será.
1: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है।

0: मेरे प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश की आवाजें, नीरज के बोल और तर्ज, शंकर जयकिशन की।
1: टिक टिक टिक टिक टिक।

इस गाने के साथ ही आज का हम हैं राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर

0: सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली निम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली निम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का

0: समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी

0: वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमरीका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रमयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: शबनम के कतरे जाग उठे, कलियों ने आंखें खोली है, लो सुबह की पहली किरण के साथ हवाओं ने भी खुशबू खोली है। इस बेहद हसीन ताजा और उजली सुबह के साथ हर एक जागते हुए मुस्कुराते दिल को अस्मा खान का प्यार भरा नमस्कार, सलाम और गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल।

दौड़ती भागती जिंदगी के इस नए सवेरे में चाय की चुस्कियों के बीच आपकी ये दोस्त अस्मा खान हाजिर है, एक बेहद खूबसूरत एहसास को समेटकर, एक ऐसा जज्बा जिसके बिना न रात ढलती है और न सुबह का सूरज उगता है। जी हाँ, आज हमारी सुबह की गुफ्तगू का मौजू है इंतजार।

0: हाथ प्यार की।
1: दोस्तों, आज सुबह का ये इंतजार मायूसी का नहीं है। आज हम बात करेंगे उस इंतजार की जो एक नई उम्मीद लाता है। जैसे रात भर अंधेरा सहने के बाद ये जमीन इस खूबसूरत सुबह का इंतजार करती है, जैसे नदी की लहरें सूरज की पहली किरण के स्पर्श का इंतजार करती है, तो इस नई सुबह एक नई उमंग के साथ अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए। चलिए इस रूहानी सुबह का आगाज करते हैं इस बेहद सुरीले ताजगी से भरे नगमे के साथ। आप जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल के साथ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पता है दोस्तों, अक्सर लोग इंतजार को एक दर्द समझते हैं, लेकिन अगर नजरिया बदला जाए तो इंतजार मोहब्बत और ख्वाहिशों की वो भट्टी है जो इंसान को और निखार देती है। जब आपको किसी चीज का सब्र के साथ इंतजार होता है तो वो दुनिया का सबसे मासूम इंतजार है। अगर आपके दिल में भी आज ऐसा ही कोई पाकीजा इंतजार धड़क रहा है तो इस सुबह को और भी खुशनुमा बनाइए इस अगले दिलकश नगमे के साथ।

वक्त जब खूबसूरत यादों के साथ गुजरता है तो पता ही नहीं चलता कि मंजिल कब करीब आ गई। घड़ी की सुइयां अब मुझे कह रही है कि अपने प्यारे दोस्तों से रुखसत लेने का वक्त हो चला है, ताकि आप अपनी जिंदगी के एक नए सवेरे को मुकम्मल कर सकें। सुनिए ये अगला गीत।

आज के इस खुशनुमा शो को समेटते हुए बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में कभी भी इंतजार से मायूस मत होना। उगता हुआ सूरज हमें यही सिखाता है कि हर ढलती हुई चीज का एक शानदार सवेरा जरूर होता है। अगर कोई आपका इंतजार कर रहा है तो उसे अपनी नफरत से नहीं, अपनी मोहब्बत से नवाजिए, क्योंकि किसी की आंखों में खुद के लिए इंतजार देखना इस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त अस्मा खान को, फिर मिलने के वादे के साथ तब तक के लिए अलविदा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, सीमा मिश्रा व साथियों की आवाज में।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी, 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने भी चलाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की।
2: अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं और खास तौर से जहां भी पैसे से कोई आपके पास डिमांड आती है कि यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज दे देंगे या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, काम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर

बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इसमें देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल चलाकर इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया है। उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुग्म और चंदू चैंपियन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक अधिक मूल पर दवा बिलिंग करने वाले 11 अनुमोदित फार्मेसी स्टोर्स का TMS अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने इम्पैनल्ड फार्मेसीज के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परीक्षा परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस साल से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस साल की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। NTA के अनुसार हाल ही के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट नकली पाई गई हैं, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 12 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों की रोकथाम के लिए सतर्कता दल भी

0: गठित किए गए थे। करौली आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर में विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विकास गोष्ठी में जिले की उपलब्धियों, चुनौतियों, पर्यटन, कृषि, उद्योग, रोजगार और रेल संपर्क जैसी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। देर सांय रणगंगा तालाब आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा, जहां विद्युतान और सहनाई वादन ने सांस्कृतिक माहौल को यादगार बना दिया। वहीं स्वच्छ करौली, सुंदर करौली अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई, सजावट और रोशनी की गई। आज साइकिल रैली, वृक्षारोपण, पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक आयोजन होंगे। बाकी वाली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा वनडे में चोटिल हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी, 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट बाय एनएसडी पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही हैं जया सिन्हा।
4: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंगे बसंती का जुनून दिखाया तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमैक्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमय किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
5: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
4: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जो जिम्मेदारी की बात की आपने, तो असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
5: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूं मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो इससे अच्छा ही करना होगा।
4: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज, ये जो

0: हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
1: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नम्बे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधरी ले लीजिए जहाँ पे अजित डोभाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्ब्लेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजित डोभाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती, क्योंकि कोई सिमिलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
0: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
1: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा। अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे? तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
0: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
1: जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देन है।
0: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं बड़ा बदलाव मिला है।
1: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे। उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं। तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
0: आप एफसीआई से जुड़े हुए किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
1: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरी दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए? मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
0: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाइन इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग थी? साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
1: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आएं दिखाया बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो

0: प्राण,
1: मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं एक्टर था, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर सब कुछ था उस सेट पर, और हम तीन लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को तीन लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पर बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
2: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से अपने युवाओं पर इसका इफेक्ट?
1: नंदी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबकी आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसकी वजह से लोग उनके यहाँ आने नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो देखिये ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कॉम्पिटिशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौर में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंदी नारायण एंड ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इम्पोर्टेंट।
2: कितने किरदार किया आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन है, यू नो कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है, कैसे आता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ तीन चार तरीके से हंस पाऊंगा, जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
2: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, तीन चार एक्सप्रेशन आपके पास
1: जो ओरिजिनल नहीं, एक होता है कि आपने एक किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी के एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इम्पोर्टेंट दैट आई हैव।
2: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
1: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, उसके बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया थ्री इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, तो अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है, विक्रम वेगा ले लीजिए, फिर सारा खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे टू में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
2: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि

0: ही मजा आता है सबसे ज्यादा।
1: ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजाक तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
0: क्राफ्ट
1: नहीं, सबकी नीयत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है, तभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को। पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते, एक ही फिल्म बनाना चाहते, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है। तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रणदीप बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स

0: जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकम्पेरेबल। अब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेज करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है? आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो यार मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा।
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरंधर। एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूं जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारे इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ न कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज।
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं और ये मानता भी आता रहा हूं कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। It was that very good. इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है। एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में, बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दिस पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकालकर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं।

0: होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पागलपन मुझ में अभी भी।
1: बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्रनाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर
6: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: श्रोताओं नमस्कार। आप यहां आए इसलिए हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: आओ में धागा।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
0: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
1: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: अक्टूबर की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनकी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से।

खेल में दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

सचिव नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

के जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी

0: नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द न आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देव आनंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगीला।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा।

इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हुक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: क्या ये सर्कस है? और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

पंडित ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

0: नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।
1: पैसे की पहचान यहाँ इंसान की।

0: हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्ज शीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है।

का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान

0: چمن لے کے لوٹا مگر پیار کو کھوجنے جو چلا نہ تن لے کے لوٹا نہ من لے کے لوٹا.
1: नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई. 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए. उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं.

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूं और आप लोगों से रूबरू हूं।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री, तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है। पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री है अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
2: जी।
3: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है। जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है, लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है

0: के मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं,
1: सबसे बड़ा
0: सबसे
1: संदेश।
0: बड़ा। जी
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था।
0: जी
1: तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म एनएफडीसी की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब ओटीटी पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: जन
1: पहुंची
0: जन
1: है।
0: तक पहुंची है ओटीटी की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है,
1: जी
0: करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी
0: मार्केटिंग
1: है
0: के
1: आप
0: लिए।
1: तक
0: जी
1: पहुंचने के
0: जी
1: लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे
1: और
0: हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: लाउड सिनेमा नहीं रहा
0: बिल्कुल
1: है,
0: नहीं।
1: गन नहीं
0: और
1: है,
0: आप और हमारे इर्द गिर्द
1: कहानियां
0: की
1: ताने बाने।
0: कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर बात
0: जरूर
1: को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे।
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही
0: जी
1: सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थीं उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना, उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ जी।

0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी, कोशिश करती हूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूं, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूं, सचेत रहती हूं कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
0: फ्री
1: ये होना चाहिए।
0: स्वतंत्र

सतर्कता लेनी चाहिए, अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं न कहीं मजबूरी या

0: आपके मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज, इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उनका काय का एड है, बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पुरी साहब सिगरेट का एड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग। मैंने कहा पुरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो हजार लोग देखेंगे, दो लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों जरा।

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला।
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहां कॉमेडी कहां सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है।

0: लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनकी
0: जी,
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है,
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम, बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टार्टिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी।
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावा नल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथारसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी।
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी।
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबू

0: जी की, जो लोगों ने जाना नहीं है। लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
1: जी।
0: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई, है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यू गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में
1: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती है।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना एमबीबीएस किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेन होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खासतौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी।

0: एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा,
1: दिल के सिवा,
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को
1: नमस्कार।
0: तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है।
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी, क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हार्ट।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंकज उदास व साथियों की गायी कुछ चुनिंदा गजलें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बिना किसी स्पेस दिए MEWSONAIR न्यूज़ ओन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज़ ओन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय 11:30 हुए हैं। चले ले चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के सफर पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लाए हैं अरिजीत सिंह की आवाज में 1920 इविल रिटर्न्स फिल्म से। इस गीत को लिखा है जुनैद वासी ने, संगीत है चित्रंजन का।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज़ ऑन

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

से भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: कल की पल पल जुड़ती जाए घड़ी, हाँ हाँ हाँ, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाजें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

जयदेव का सर्वदुखिया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सिखियों की आवाजें थी। रेशमा और शीरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओं

शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इस गाया हुआ मधुर फिल्म कन्यादान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देवबर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

जगत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियां, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, जिन्होंने उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आंखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आंखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं से जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहाँ जो आपकी बातों में है। तुम्हारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गई, कभी दिल में उकेरी गई, कभी प्रकृति के सुंदर नजारों में नजर आई, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं, तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओ, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नजारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं,

तस्वीर इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री है ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज के बोल थे सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, और हमने गीतकार का नाम पूछा था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है श्रोताओं। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सूंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है वो प्रति जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो है। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश, वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों न हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज की नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है, प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की। एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती है, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंची के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी, ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिनों

बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेन्द्र का लिखा एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल यूवर्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है जो बात तुझमें मुझमें या हममें है वो तस्वीर में नहीं हो सकती लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है। हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का

एग्जाम में दो और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारी पुरानी यादों की गठरी खुलने वाली है। सच में हमें काफी समय हो गया है, हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं। और हाँ, क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं?

एक श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहां पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समुद्र में वापस ले जाती है, जहां रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं ये कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोते लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में

देखें तो बहुत अच्छा होगा श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन काइंड एंड दैट इज आईज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आईज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स आर एज वेल एज प्रोज हैव डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ आईज। ऑल द बेस्ट। इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं। कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं। इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी। अब फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओ और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओं, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिट्टी नहीं है, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ।

तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हो तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूं, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर है। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला।

खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी गुले, जहाँ जुल्फे तेरी रहूं उसी मन

0: रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म आई गई ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती है, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती है, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती है, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान से वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो, इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त, वो अल्लाह अदाएं जो तस्वीर

शरीर में भी एक मधोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, एक और श्रोता लिखते हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से, कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज खींची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

स्थानीय श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की काली घटाओं की रात में चांद की तारामंडल की सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त नदियां तालाब झील पर्वत देवदार और वृक्ष पक्षी ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में रोशन की दृष्टि। हमारे एक श्रोता ने लिखा है जीवन परिवार के संबंधियों यात्रा प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें और नाना नानी दादा दादी जी माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी है तो तस्वीरों की यादों को ताजा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यही सम्पन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग क्योंकि आगे भी है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में

खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं, जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं। वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है, वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास
1: जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते

0: हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों

0: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉ मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश

लाभान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
4: वो तेरे प्यार का।
3: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
3: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
3: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होट

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

काफ़ उठा मेरा भीगा बदन।

0: आप सुन रहे थे लाज साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हस्सु जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ सदाबहार नवमी कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होट

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीले गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जाए बहार बड़ी।

जी नहीं किया। फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाह जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मुईन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

मंजर की सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविन्द्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह सुनने आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला गणेश ने और फरमाइश की आप सभी ने, सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महशिवन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लूफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने। और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की सोनी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा गोवर्धन वर्मा रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन अब्दुल अजीज अफियत मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपार वीर सिंह लाठी लखविंदर संधु महावीर संधु गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब।
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ।
2: सुन रहे हैं क्या? हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ सब ठीक

0: तो दूसरा करेगा कौन?
1: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
0: आप जा कहाँ रहे हैं?
1: क्यों
0: नहीं पूछना चाहिए क्या?
1: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है?
0: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
1: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
0: क्या कह रहे हैं आप?
1: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ।

0: धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहाँ राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
1: लेकिन क्या कह रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
2: आप आराम से बैठिए ना।
0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
3: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा लिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करण तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके?
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी देखी थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो?

0: सच्ची तो कह रही हूँ बेटी, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: आप ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठकी रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गई।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम ये बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा, जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना।

0: ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
0: ये एकाएक क्या हो गया भैया, तुम सब कुछ जानते हो नरेश। मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
0: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया।
0: इसमें आखिर ये हुआ कैसे, क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
0: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वो घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
0: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
0: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ। मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
0: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
0: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
0: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
0: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
0: आप तो यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
0: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
0: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
0: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
2: कौन भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
0: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था।
2: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
0: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
2: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
0: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
2: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
0: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
2: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूँ भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
0: समस्या? क्या समस्या है?
2: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
0: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
2: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
0: समस्या तो कठिन है ही।
2: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
0: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
2: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
0: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
2: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
0: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
2: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
0: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
2: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
0: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा।

0: पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
1: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
1: कितने दिन तो हो गए?
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहाँ जहाँ सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
1: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
1: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
1: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
1: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
1: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
1: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने कहीं छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
1: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
1: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
1: इतने रुपए लगेंगे?
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
1: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
1: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
1: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
1: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा?
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है,
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपया लगेंगे।
0: हाँ रुपए तो लगेंगे।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: नरेश।
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे
1: तब? परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है

0: कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें? अपनी तीन बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
1: भैया भैया भैया क्या हो गया? भैया क्या हो गया?
2: क्या हुआ? क्या नरेश
1: क्या दिखेगा? भैया कृष्णा ने आत्महत्या।

0: ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से उठ गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: ऑफिस तो पिछले बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भी मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपवाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपवाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माँ मरना शून्य है।
1: माँ मरना शून्य है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता

0: ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण नहीं नहीं, क्या मतलब है इसका? कहा नहीं नहीं, दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये आपके घर की चिट्ठी है? लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
0: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
1: आपकी पत्नी बीमार है?
0: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई? कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ, तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती?
2: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती,
4: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका है सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: लग रहा है? है
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको
2: जी,
1: याद
2: जी सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुनाओ मुझे, सुनाओगी?

0: तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई
1: जी।
0: और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था, लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी वह, ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से ही, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई, लेकिन और कोई कहानी है? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है, तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम कहानियां, बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
0: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था पहले, तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
0: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
0: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
0: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहे, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी, और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की, और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की, 2 साल ये शादी टिकी, और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और
0: पुणे आ गई, और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा नाम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।

0: जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
1: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
0: क्या बात है, तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
1: ओह डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
0: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए, वो तो अभिनेत्री भी थी।
1: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, मछुआरी का, तुलसा नाम की। हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था, वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजिम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाडा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो। और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स की पढ़ा, और स्टैंसलर्स की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था, है कि
0: सही।
1: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
0: हाँ, कमाल की बात है। हाँ, बड़ी शरारती थी।
1: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की, और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम्हें सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत हार्ड, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
0: वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा।
1: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो मारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी

0: में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेकन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ, हाँ, शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना, हाँ, की बात,
0: लेकिन
1: है, ये वाला जिक्र, हाँ, आगे की तरफ, ओके, करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे, हाँ। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं,
1: फिल्म, हाँ, में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ, हाँ,
1: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो,
0: वाह वाह क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा
0: जी बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट,
0: बिल्कुल,
1: और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, और लक्ष्मीबाई टेड़क की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ानी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पुणे में घूमते बहुत थे, पुणे वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन शैली का,
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुँचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: बड़ा मजेदार है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, रामशास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता, और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था। तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, गाने वाले, तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर

0: शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची चली
0: रही है
1: आती है।
0: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा, इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो
1: हाँ
0: उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब
0: नहीं।
1: गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार में
0: जी देखो,
1: उसको
0: वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना?
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा, जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाते थे, अपनी साइकिल चला के डेकनियम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होई। हाँ, अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो पूरा याद है,
0: ब्रह्मण्य
1: शिव तांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरू, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया, और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने हुए।

0: भारी
1: भारी
0: होते हैं।
1: होते हैं। ठीक
0: वो
1: ठीक
0: यूं ही
1: ठीक
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओ हो, तो आप ऑडिशन के? तो मैंने कहा ऐसे आइए, देखने क्या होता है वगैरह। ओ हो, मायूस हुए सब लोग, तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगे आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला।

0: ने पढ़ा तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर कल से आ जाइए और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रूपए।
1: वाह वाह।
0: और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रूपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की, ऐसी दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। पर फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो हाँ। बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम, और बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गर्दी माडगोल करके घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना।
1: मैं सर
0: हाँ हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से।
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, हाँ, गदी माडगुलकर, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग प्वाइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहता है, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुलो देशपांडे।
0: अरे वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष, ली तरह ऐसे लिखते रहो। तो मतलब

0: ने फिर से छापी, वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बाल उद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है तीन नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें, तो वो ऐसे एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ ये शांति दूत बनेगा फला ढिमका ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सरो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन में छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखती
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते
0: हाँ,
1: से फैसला करते हैं कि अच्छा, जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा,
1: जाएगा।
0: तो, ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं, हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद
0: चश्मे बद्दूर का, क्यों नहीं वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते हैं काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

0: याले जावे
1: याले जावे
0: भाई भगरे भगरे
1: भगरे
0: भगरे।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे

0: थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा,
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया। लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी,
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको
1: जी, तो वो अखबार में विज्ञापन देखा,
0: हाँ, तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो, मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
1: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। कहते कैसे कैसे, एक महीने का, क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया पधारा NSD में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात है?
0: तो वो आ गया और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब सात जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए
0: जी, जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो
0: होती, हाँ, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी, एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया। हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी, बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था, खैर वो बात और है। तो तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी इज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं।

0: के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया, दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की भी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से

यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंडिक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे और प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी दे हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहली आज की सभा की शेष रहे मुख्य कार्यक्रम। अब से कुछ ही पूर्व में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, प्यार के साथ पर्याप्त अनुशासन, भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जंक फूड से दूरी, अच्छी सेहत के लिए जरूरी विषय पर निशल जैन से प्रीति यादव की बातचीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर मारी कल के प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो उत्तरमुख का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रामचरितमानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः के 6:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम खेती में बात का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

के 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिन से का समय रहेगा अपराधों के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे अपराधों के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

0: अनुशासन से जीवन खेलता, हर सपना सच होता मिलता। समय का जो मान है करता, वही सदा आगे बढ़ता। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के कार्यक्रम का। तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बच्चों के मुख से में, जिसे लेकर हाजिर है आपकी दीदी प्रीति यादव। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जंक फूड हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन यह स्वाद जितना आकर्षक होता है, सेहत के लिए उतना ही नुकसानदायक भी होता है। तो बच्चों, हमारी आज की बातचीत का विषय है जंक फूड से दूरी अच्छी सेहत के लिए जरूरी। इस विषय पर बात की है दिशा जैन से, तो आइए सुनते हैं बातचीत, जिसमें आप सुनेंगे कविता और कहानी। तो आइए सुनते हैं। बच्चों, आज हमारे बीच एक नन्ही बालिका आई है, दिशल जैन। हेलो बेटा।
1: हेलो
0: बेटा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो और कौन से स्कूल में हो?
1: मैं आदित्य पब्लिक स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: बहुत ही अच्छा। बेटा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जंक फूड से दूरी सेहत है जरूरी, तो दिशल आप इस विषय पर क्या सुनाना चाहेंगी हमारे बच्चों?
1: मैं जंक फूड से दूरी कविता सुनाना चाहूंगी।
0: सुनाइए।
1: पिज्जा बर्गर चिप्स सुहाते, लेकिन सेहत को है सताते। फल सब्जी का साथ निभाओ, ताकत तंदुरुस्ती खूब पाओ। कोल्ड ड्रिंक को दूर भगाओ, दूध और पानी रोज पिलाओ। घर का खाना सबसे न्यारा, यही है सेहत का उजियारा। जंक फूड कम पौष्टिक खाना, यही है बच्चों का खजाना। स्वस्थ रहो, मुस्कान सजाओ, खुशहाल जीवन अपना बनाओ।
0: दिशल, आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, अब और क्या सुनाना चाहोगी?
1: मैं एक कहानी भी सुनाना चाहूंगी।
0: कौन सी?
1: जंक फूड का जादू टूटा।
0: सुनाइए।
1: एक गांव में आरव और अनाया नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों बहुत प्यारे थे, लेकिन उन्हें एक बुरी आदत थी। वे रोज पिज्जा बर्गर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही खाना चाहते थे। माँ प्यार से दाल रोटी सब्जी और फल देती, लेकिन वे मना कर देते। एक रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि एक जंक फूड राजा आया है। राजा बोला, आओ बच्चों, जितना चाहो चिप्स बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खाओ।

0: दोनों बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। शुरू में उन्हें बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पेट में दर्द होने लगा, दांतों में कीड़े लग गए, शरीर में कमजोरी आ गई और वे खेल भी नहीं पाए। तभी वहाँ एक चमकती हुई सेहत परी आई। उसने मुस्कुराकर कहा, बच्चों स्वाद अच्छा होना ही काफी नहीं है, शरीर को ताकत भी चाहिए। परी ने उन्हें ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही और घर का बना खाना दिखाया। जैसे ही बच्चों ने वह खाना खाया, उनके पेट ठीक हो गया, शरीर में ताकत आ गई और वे फिर से दौड़ने कूदने लगे। अचानक आरव की नींद खुल गई। उसने अपना सपना अनाया और माँ को बताया। दोनों ने फैसला किया कि अब वे रोज घर का पौष्टिक खाना खाएंगे और जंक फूड केवल कभी कभी, वह भी बहुत कम मात्रा में। कुछ ही दिनों में दोनों पहले से ज्यादा स्वस्थ, चुस्त और खुश रहने लगे। अब वे अपने दोस्तों को भी यही सलाह देते थे कि स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी की सीख, जंक फूड कभी कभार ही खाए, रोजाना घर का पौष्टिक भोजन, फल, सब्जियां और दूध शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाते हैं।
1: बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई आपने और बताया कि हमें हमेशा घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, जंक फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो दिशल, आपको जंक फूड अच्छा लगता है और जंक फूड में कौन कौन से डिशेस अच्छी लगती हैं?
0: हाँ, मुझे जंक फूड अच्छा लगता है और मुझे जंक फूड में पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है।
1: दिशल, आपको पता है कि जंक फूड खाने से हमारा शरीर खराब हो जाता है, इससे क्या नुकसान होता है मालूम है?
0: नहीं, पर मेरी मम्मी कहती है कि जंक फूड्स खाने से पेट दर्द हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है और हम बीमार भी हो जाते हैं। जंक फूड नहीं खाना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो फिर मम्मी आपको क्या देती है?
0: मुझे मम्मी दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही और पौष्टिक भोजन देती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कि यही खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसा कि अभी आपने कहानी सुनाई आरव और अनाया की, तो उसमें आपने देखा ना उनका शरीर कितना खराब हो जाता है, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली?
0: जैसे आरव और अनाया के साथ हुआ था, उनका पेट दर्द हुआ था, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी कुछ दिनों तक लगातार जंक फूड खाया और मेरा भी पेट खराब हो गया। तब से मैंने सोचा कि मैं जंक फूड कम करूंगी और पौष्टिक भोजन लेने की ज्यादा कोशिश करूंगी।
1: तो बच्चों, आपने सुना ना कि दिशल ने क्या कहा कि जंक फूड कम करना है और पौष्टिक आहार ज्यादा लेना है, तो आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें। दिशल, आपने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी जंक फूड के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने दिशल जैन से जानकारी हासिल की कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए और जो पौष्टिक आहार है उसे ही लेना चाहिए। तो अब चलते हैं हम गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

टमाटा कम बनेंगे कद्दू गठीले पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी चक्के में चलता चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े अदारी थोड़े पिछाड़ी

है, मंजिल है मुश्किल, गिरने का डर है। लंबा सफर है, तेरी डगर है, मंजिल है मुश्किल।

میں جگہ جگہ بیگہ

फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। बच्चों अब हमारा अगला विषय है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आखिर होता क्या है? बैंक वह जगह है जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, जरूरत पड़ने पर निकालते हैं और भविष्य के लिए बचत करते हैं। हर साल 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे बल्कि गांवों, किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों, आम लोगों तक भी पहुंचे। अब सोचिए अगर बैंक गांव-गांव तक न पहुंचते तो लोगों के लिए पैसा जमा करना, ऋण लेना या अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखना कितना कठिन होता। राष्ट्रीयकरण के बाद लाखों

0: को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिला और देश के विकास को नई गति मिली। बच्चों आप भी कुछ सीख सकते हैं, जैसे पहली बार बच्चों की आप अपने आप में बचत की आदत डालिए। यदि आपको जेब खर्च मिलता है तो उसका एक छोटा हिस्सा गुल्लक या बैंक खाते में जरूर जमा करें। दूसरी बात, पैसे का सही उपयोग करें, बिना जरूरत के खर्च करने के बजाय सोच समझ कर खर्च करें। तीसरी बात, डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानें। आजकल ऑनलाइन भुगतान, एटीएम और यूपीआई जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन इनका उपयोग हमेशा माता पिता की देखरेख में करें और अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ भी साझा न करें। तो बच्चों, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि बचत, ईमानदारी और आर्थिक समझ जीवन को मजबूत बनाती है। यही तो थी चर्चा, हम आगे चर्चा की ओर बढ़े इससे पहले सुन लेते हैं एक संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: la la la la la la la la la.
1: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। अब हमारा अगला विषय है प्यार के साथ पर्याप्त अनुशासन। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब सिर्फ डांटना या सजा देना नहीं होता। असल में अनुशासन का मतलब है

यही सब उपाय और सही काम करना, नियमों का पालन करना और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना। और जब अनुशासन प्यार के साथ दिया जाए तो वो और भी असरदार और सुंदर बन जाता है। प्यार के साथ अनुशासन का मतलब है कि बड़े समझाए, डांटे नहीं, रास्ता दिखाए, डराए नहीं और इतना सिखाए कि वे खुद सही और गलत में फर्क समझ सके। याद रखिए, प्यार और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। प्यार हमें आत्मविश्वास देता है और अनुशासन हमें जिम्मेदार बनाता है। जो बच्चे समय का पालन करते हैं, सच बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, एक छोटा सा संकल्प ले, हम अपने माता पिता और शिक्षकों की बात ध्यान से सुनेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे और हर काम पूरे मन से करेंगे। तो बच्चों, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और प्यार के साथ अनुशासित जीवन अपनाइए। तो बच्चों, यह थी चर्चा और फिर से चलते हैं गीत संगीत की और हम सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: मेरे पिया दे है,
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो
0: बजता है छाया गीत।

0: ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना, हल्का इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अलाक़वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने

0: मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायक कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आज की सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सहयोग करेंगे। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त करने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने और विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवा स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता होने पर इन्हें रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष से पिछले 24 घंटों में हुए सामान्य और सिजेरियन प्रसव और उनकी वर्तमान हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद अगले 24 घंटे धात्री महिला की गहन निगरानी रखने और उसके पोषण का समुचित ध्यान रखने

को कहा। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को आवश्यक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान सहित केंद्र और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोतरा में निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से कल से 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें श्रमिकों के निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ये शिविर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार के फिर गति पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। आज दोपहर बाद कोटपुतली बहरोड में कुछ स्थान पर बारिश हुई। इससे आमजन को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। करौली जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली स्थापना दिवस पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये जिला आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कहा कि करौली निरंतर विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम हम सभी को हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करता रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मियामी स्टेडियम में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से

0: बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 34 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से किया। गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता सेल्फी विथ रेलवे स्टेशन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी मौजूद रहे। जिले में बीते दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी नामांतरण, भूमि रूपांतरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। वहीं नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोग भूमि रूपांतरण, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेते नजर आए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों विकसित भारत ग्राम योजना के शुभारम्भ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम खिजूरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चारागाह भूमि पर पीपल पूजन और पौधरोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ब्यावर के मसूदा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पिछले दिनों सवाईमाधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ और HPCL के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी के MD सुरेश कुमार सेन ने बताया कि सवाई माधोपुर और करौली जिले में HPCL के 75 पेट्रोल पंप हैं, जहां 25 पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद के आउटलेट, कियोस्क और बूथ लगाए जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार से दिशा निर्देशों के बाद परीक्षण कर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के कुसाय और खंडीप तक नहरों में भरपूर पानी आने के बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

0: में पर्यटन का काम 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है। इसके पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह में भारी संख्या में पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मानसून के दौरान रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन्य जीव संरक्षण को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वन क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से बाघ और अन्य वन्य जीवों की गणना का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना और सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में 300 प्वाइंट निर्धारित कर 600 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। जिले में मॉनसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना हुआ है। बरसात नहीं होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं खरीफ की फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इसी के साथ सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रो मानसून सत्र कालसू, सरकार का ने आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सगड़ा दलाओं सदन में सुचारू रूप चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग ने काने जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य रिक्षणी माए थौड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वाली लगातार मॉनिटरिंग करवा और सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करवाने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सके है, आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। समाचार रे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। संसद रा कालसू सरुवेरिया मानसून सत्रों पहली आज सरकार संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक री अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करी। बैठक रे पछे मीडियाओं बातचीत रे दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षों अरज करी के वे मानसून सत्र री कार्यवाही ने सुचारू रूप चलावा माए इमदाद करे। श्री रिजिजू कया के संसद सगड़ारी है और इन दौरान सरकार न्यारा न्यारा विधेयक करेला और विधेयक पेश करेला। वना आज जताई के विपक्ष और सत्ता पक्ष सदस्य रचनात्मक रूपों इनमाए भाग लेवे। श्री रिजिजू कया के संसद जितनी चोखी तरीकों काम करेला देश का तर उत्तो ही चोखो रहवेला।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
1: संसद रा मानसून सत्र माए कई महताओ विधायी मामला माथे चर्चा करिया जाबा और वाने पारित करिया जाबारो अंदाजो है। आज री सर्वदलीय बैठक रे मार्फत सरकार ने आस है के सगला राजनीतिक दल संसद री कार्यवाही सुचारू रूप चलावा माए इमदाद करेला। ओ सत्र 13 अगस्त ताई चालेला। राज्य सरकारी कानियों करिया जा रिया निवेश प्रोत्साहन की कोशिशा ने राष्ट्रीय स्तर माथे सराहना मिली है। नीति आयोग री कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य रिक्षणी माए थौड़ मिली है। बती जानकारी समाचार कक्ष सू।
3: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार

0: निवेश पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे ने वारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मंगल पांडे रो शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय खातर गर्व री बात है। वे कया के मंगल पांडे री देशभक्ति और वीरता री गाथा देश री पीढ़िया ने प्रेरित करती रहवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा नायक मंगल पांडे ने सिरदाऊ याद करता थका सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मातृभूमि री स्वतंत्रता खातर वारो समर्पण और राष्ट्र प्रेम सगला माए हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित खातर जाग जगावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य अहलकारा ने हर एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलावारी सूची तैयार करबा और आरी रोजाना मॉनिटरिंग करबारा निर्देश दिया है। वणा जरूरत पड़बा माथे रेफरल सुविधावा मुहैया कराबा ने कया। मुख्य सचिव आज जयपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश की मातृ और शिशु स्वास्थ्य राज्य रा सगला मेडिकल कॉलेज रा अधीक्षक और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष सु लारला 24 घंटा मायविया सामान्य अर्सिजेरियन जापा और वारी हाल रा स्वास्थ्य रा बारा माय जानकारी लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वना प्रसव रे पछे आवता 24 घंटा धात्री महिला ने गहन निगरानी माय राखबा और वारा पोषण रो पूरो ध्यान राखबा ने कया। मुख्य सचिव सगला सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया है। बैठक माय चिकित्सा महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और दूजा ठावा अधिकारी मौजूद रिया। डूंगरपुर माए ग्रामीण विकास मंत्रालय रा अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया री अगुवाई माए केंद्रीय दल आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम रा प्रभावी क्रियान्वयन खातर समीक्षा बैठक करी। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान समेत केंद्र और राज्य स्तरीय अहलकार भाग लेना। इन दौरान जिला माए चाल री न्यारी न्यारी गतिविधियां और प्रगति माथे बत्ती चर्चा करी गई। एहलकारा ने योजनावारा प्रभावी संचालन पारदर्शी क्रियान्वयन और बत्तों बत्ता लोगा ताई फायदो पुगा बखातर जरूरी निर्देश दिया गया। बालोतरा माए निर्माण मजूरारी समस्या वारो तुरंत हल कार्ड बखातर शह महकमारी कानी उकालसू 3 दिन रो विशेष शिविर राख्यो जावेला। इन माए मजूरारा निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजना वासू जुड़िया लंबित आवेदनारो निस्तारण करियो जावेला। ओ शिविर महकमारा थानीय कार्यालय माए राख्या जावेला। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश माए मानसून रे फेरू रफ्तार पकड़बारा संकेत मिल रिया है। मौसम केंद्र जयपुर आज प्रदेश माए 15 जिला माए आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। अंदाजा रे मुजब पहली पूर्वी राजस्थान और उनरे पछे राज्य रा पश्चिमी हल्का माए बारिश आवक वह सके है। कालू कोटा भरतपुर जयपुर और अजमेर संभागरा कुछ एक हल्का माए बारिश वह सके है। इन बीच प्रदेश माए कटे कटे मे बरसियो। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान सबू बत्तो 32 मिलीमीटर मे दौसा जिला रा बसवा माए दर्ज करियो गयो। इनरे इतर अलवर धौलपुर बूंदी और कोटारा कुछ एक हल्का माए छितरायो में बरसियो। आज दोपहर पछे कोटपुतली बहरोड़ माए कुछ एक थोड़ा माते में बरसियो। इनसो आमजन ने तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे बादल छायोड़ा है। विभाग रे मुजब प्रदेश माए इन मानसून सीजन रे दौरान हाल तई सामान्य करीब 25% कम बिरखा भी है। करौली जिलो आज आप रोथा अपना दिवस मना

0: लियो है। इन मौके जिला भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और न्यारी न्यारी होड़ा राखी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करौली रात स्थापना दिवस माथे जिलावासियों ने शुभकामना दी। सोशल मीडिया संदेश में वे कया कि ओ जिलो आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव री अनुपम धरोहर है। वना कया के करौली लगातार विकास, समृद्धि और खुशहाली रा नया आयाम स्थापित करिया है। फीफा विश्व कप 2026 रो फाइनल मुकाबलो आज अर्जेंटीना और स्पेन रे बीच खेली जावेला। भारतीय टीम रे मुजब ओ मैच न्यूयॉर्क रा न्यूजर्सी स्टेडियम माए रात के 12:30 बजे सु शुरू वेला। इनसु पहली काल मियामी स्टेडियम माए तीजी ठोड़ खातर खेलिया गया मुकाबला माए इंग्लैंड फ्रांस ने 6-4 सु मात देर कांसारो तमगो जीत लियो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो खिताब जीतबा माथे पीवी संधु ने बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया कया के जापान ओपन रो खिताब जीतबा वाली पहली भारतीय बनर सिंधु इतिहास रच दीनो। वे कया के वारी इन उपलब्धि माथे पूरा देश ने गर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पढ़ानिया और मारा माता पिता ने ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट री जांच खातर केवल असली ओएमआर ही जमा कराबारी राय दी है। फर्जी या एआई सु बनाई गई ओएमआर शीट देबा माथे कानूनी कार्यवाही वह सके है। इन खातर पढ़ानिया और मारा अभिभावका सु अर्ज करी गई है कि वे जांच खातर केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वेला। ई सारो आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माते भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए विचार भेजा जा सके है। और अबे आखिर माए खास खबरा एकर फेरू। संसद रो मानसून सत्र काल सु सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सगड़ा दलों सदन सुचारू रूप चलाबारी अर्ज करी गई। नीति आयोग रे कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान ने अग्रणी राज्य की श्रेणी में थोड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वाली लगातार मॉनिटरिंग करवा और सफाखाना ने जरूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की पालना करवाने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सके है। आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में गांव मसोरा मतावेला सब किसान भाइयों ने बोनों ने शंकर भाई नू राम राम। किसान भाइयों हाल में टेम है चौपाल अपने कार्यक्रम में सब भाई बोन आवे थे कहें किसान भाइयों जय भी मेरा खेतर ने मैं अपने खरपतवार नाशी ने कीटनाशी दवा ने छिड़काव करा तो एना टेम माते अपने कुछ सावधानी है राखी पड़े फसलें जो है इनमें इनमें समस्या ने अनुसार सही दवा चयन अपने करव पड़ेगा। दवा की जो मात्रा नाखवी है ये भी अपने तय करनी पड़ेगा क्योंकि अधिक मात्रा ने में नखेगी दवा तो फसल ने नुकसान थी सके ने कम मात्रा होगा तो पूरे लाभ नहीं मिलेगा। छिड़काव जो टीम है ये अपने हवार या हाज में अपने राखो पड़ेगा।

0: तेज हवा चलती हो, तेज धूप हो या पसे बारिश थी रही है या बारिश थवानी संभावना है, एवं टेम माते आपने में छिड़काव ने करवो जुए। दवा नो जो छिड़काव करूंगा एना टेम माते आपने में हाथों में दस्ताना आपने पहनी शको, मास्क जो है ईबी आपने लगाई शको, ने कपड़ा जो है आपने पूरा बाहे वाला कपड़ा ने हाथ पहनकर ने अगर जोड़ा आपने पहनी शको तो आपने पहनवो जुए, जरूर पहनवो जुए। छिड़काव करते टेम माते आपने में खाव पीव नहीं करव जुए या पे अपने धूम्रपान जो है ई भी अपने नहीं करव जुए। स्प्रे पंप अपने पास ये भी है, यानी जो नोजल है इन्हें अपने सही रखनी है ताकि दवा जो है ये पूरा खेतर में समान रूप की फैले। ने कृषि विशेषज्ञ की सलाह ने बना दो या इंत की वजह दवा आपस में मिलाई नहीं छिड़काव अपने नहीं करव जुए। छिड़काव ने बाद अपने हाथ है, अपने चेहरे है या बस अपने शरीर है इन्हें अपने अच्छी तरह की धोवू है। ने अपने जो कपड़ा है जो अपने दवा छिड़कते टाइम अपने पहरे था इन्हें कपड़े में अपने अलग राखी दे इन्हें धोई ना को साफ कर दे। ने खाली दवा जो है इन्हें जो डब्बा है इन्हें सुरक्षित तरीका से अपने निपटारा करवा है। ने एना काम हरू अपने में अपने घर में कोई घरेलू सामान उपयोग में नहीं लेव। सुरक्षित छिड़काव जो है ये अपनी फसल ने भी सुरक्षित रखेगा, अपने स्वास्थ्य भी सुरक्षित रखेगा, ने पर्यावरण में भी रक्षा करेगा। किसान भाइयों खेती में हाथे हाथे अपने पशुपालन भी कर रहा, एवं एक पशुपालक भाई है जो खेती बाड़ी भी करी थका है, ने हाथे हाथे इनके पास पशु भी है तो ये इन पशुओं ने हरती व्यवस्था करें इन्हें बारे में विवरण जानकारी इन्हें अपने आनी है ये अपने हमला ने पसे अपने अगली बात करा।
1: राम राम।
2: राम राम
1: भाई हो नाम तुम्हारो?
2: मारो नाम जिगर सेवक है, मोरे वाला बड़गम नाम।
1: अच्छा अच्छा जिगर भाई तुम्हें खेती बाड़ी करिए थकाओ तुम्हारे आज खेतर है इन्हें अलावा भी तुम्हारे आज खेतर है
2: मारा जगह है 8-10 बीघा जगह है मैं खुद करो।
1: अच्छा अच्छा
2: तो मैंने अनुभव भी बढ़िया है इन बारा में।
1: हाँ हाँ तो जिगर भाई एक बात बताओ, चलो खेती बाड़ी भी तुम्हें करी रहता करो तुम्हारी अच्छी खासी खेती भी है तो मैं मानू कि तुम्हें आने हाथे पशुपालन भी करता होगा?
2: पशुपालन भी करो, हमारे घरे 5-10 डोबो भी है, 4-5 गाय भी है।
1: अच्छा अच्छा चलो बकरिया भी है?
2: बकरिया भी है।
1: चलो एक एक एक करी अपने बात करो कि जिन सबसे पहले हम गाय की बात करूं तो तुम्हें जिन गाय भी है ना भेड़ भी तो बेने वास्ते तुम्हें रेवानु अलग अलग करियो है कि बे भेगस रहे?
2: भेगस रहे, थोड़ा थोड़ा सिटी बांध है इनने।
1: अच्छा
2: ने बे मल्ली जुली ने रहे कुल मलावी ने।
1: अच्छा अच्छा तो इनने रेवा वास्ते तुम्हें हो बाड़ो है कि
2: इनने आपने वाड़ो बनेलो इनमें इनने खावा पीवा की व्यवस्था करी मिनी है?
1: अच्छा
2: आपने एक खेतर में इनने बल्ले हरी घास भी करी मिनी है अपन का बाजरो एना थी की दूध भी बढ़िया आवे इनने प्रोटीन मले बढ़िया।
1: अच्छा
2: ने एना थी की दूध नी बढ़ोतरी भी था।
1: आज तुमने इन वास्ते जो अलग थे की तुम्हारे क्षेत्र में मतलब पशुओं ने वास्ते इन्हें खाने की व्यवस्था करी रखी
2: है? करी रखी है।
1: ने ये आवश्यक भी है?
2: हाँ।
1: तो एक बात जी मैं बता रहा हूँ कि जब तुम यहाँ पशुपालन करी रहा हो जिनमें तुम्हारे गाय भी है डुब्बे भी है तो इनमें सुबह थे की लगा इन्हें हाँस तक इनकी आपने हूँ ध्यान रखू पड़े हूँ सेवा करनी पड़े इनकी
2: एक जेम अपने मनक हाँ अपन ताप में उबर नहीं रही सकते इनो भी ध्यान रखो पड़े ये भी एक जीव है इनने जितली सुरक्षा राखंगा ने जितलो इनने लाड प्यार आलंगा मनक वाणी है ये आपने वधार दूध आलेगा ने आपने थी की जुड़ी थकू रहेगा।
1: अरे यार खूब अच्छी बात होता है यार मतलब अपने खाली इन्हें पशु नहीं मानवो इन्हें हाथ भावनात्मक रूप थे कि आपने जुड़व पड़ेगा इन्हें भी अपने प्रेम करव पड़ेगा। हाँ। आपने इन्हें प्रेम करेंगे तो ये चीज नहीं
2: समझेगा ये पसे आपने दूध वगैरह भी हेलो आएगा इन्हें दूध में प्रोटीन वगैरह हेलो रहेगा।
1: तो एक बात तो आपने ध्यान रखी है ने बीजी बात जब सुबह कितनी बजे ने थकी आपने सुबह सुबह मतलब 5 बजे तक काम चालू करू पड़े
2: ने हूँ है जैसे आपने हाजी दूध काढ़ियो हाजी 5-6 वगे दूध काढ़ियो इन्हें हवारे भी एना टाइम माते 5-6 वगे दूध काढ़ो पहले उठव पड़े इन गोबर वगैरह रे साफ करव पड़े आपने बस इन्हें घास वास डालवी पड़े जे वाटो में ना आपड़े जैसे घऊ नो वाटो है मक्की नो वाटो है जव नो वाटो आवे एक खल आवे ई वाटो इनने तैयार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

खरीफ में जो फसल है, प्रमुख फसल धान, उन्हें धान में रोपाई है, ये सही तरीका थे कि अगर करा तो पौधा ने जो बढ़वा रहे ये अच्छी थाएगा, में उत्पादन जो है ये भी अधिक मिलेगा। खेतों में जो तैयारी है, खेतों में दे थे कि तीन गुना जुताई करो, खेत में समतल बढ़ाओ ताकि पानी जो है ये पूरा खेत में समान रूप से फैले। रोपाई थी कि पहले खेत में 5-7 सेंटीमीटर पानी रखो, ने रोपाई में वास्ते 20-25 दाड़ा तक स्वस्थ ने हरी पौध जो है ये सब थकी उपयुक्त तो मानी जाए। पौध जो है ये रोग ने कीट थे की मुक्त हो जुए। रोपाई में जो टीम है, मानसून ने अच्छी जो वर्षा थी जाए इन्हें बाद अपने रोपाई करो, देर थी कि रोपाई करना थी कि उत्पादन में कमी आ सके। एक स्थान में माते बे थी कि तीन पौधा लगाड़वा है, पौधा में जो है बहुत गहराई में नहीं लगाड़वा है, लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई जो है ये पर्याप्त कहवाए। कतार थी कि कतार में जो दूरी है ये लगभग 20 सेंटीमीटर में, पौधा थे कि पौधा में जो दूरी है ये 15 सेंटीमीटर राखवी है। मिट्टी परीक्षण में आधार में माते अपने खातर में उपयोग करवो है, गोबर में जो सड़ी खाद है या कंपोस्ट में उपयोग जो है ये लाभदायक रहे। नाइट्रोजन फास्फोरस में पोटास में संतुलित उपयोग करवो है। नाइट्रोजन में जो खुराक है ये बे थे कि 3 गिराने में अपने आलवी है। रोपाई की बात, शुरुआती दाड़ा में हल्को पानी अपने बढ़ावी राखव पड़ेगा, लगातार गहरो पानी भरी में राखवानी आवश्यकता नहीं रहे। खेतर में जल निकासी में उचित व्यवस्था भी राखी पड़ेगा। रोपाई में 15-20 दाड़ा बाद खरपतवार में निगरानी करनी है, आवश्यकता ने अनुसार निराई गुड़ाई करनी है, ने कृषि विशेषज्ञ ने सलाह थी कि खरपतवार नाशी नो अपने प्रयोग कर सका। तना छेदक, भूरा फुदका में पत्ती लपेटक जेवा जे कीट है इनमें माते भी अपने नियमित निगरानी राखी है। रोग या कीट अपने में देखे तो पसे अपने में जे भी दवा इना रोग नहीं है ये पतो करी ने अनुशंसित जो दवा है, गलत दवा ने नाकी है इना रोग नहीं जो दवा है इना सपने में प्रयोग करो है। तो किसान भाइयों, सही समय माते रोपाई, संतुलित उर्वरक में उचित जल प्रबंधन में नियमित निगरानी आने सब थी कि आपने धान में अच्छी पैदावार प्राप्त करी सका। तो किसान भाइयों, आज धान में जो फसल है ये किसान भाई इन्हें रोपाई करी सके, ने इन्हें अधिक उत्पादन समय में रोपाई करी ले सके। ने किसान भाइयों, अभी मक्का की फसल में भी टेम है, इन्हें भी तैयारी सारी कि धान में फसल भी है, अभी मूंगफली भी करें, कोई लोग सोयाबीन भी करें, तो अन्य सब में फसल में समय प्रबंधन में हाथे सही उर्वरक ना प्रयोग की किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। किसान भाई, अरे जाते जाते एक बढ़िया सो भजन अपने हमर ने पस अपने विदा लूंगा।

सभी के साथ श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इपको राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए

0: कोद वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला काश्तकार भाया ने और ढाणिया में चूल्हा पर काम करती सगली बहनावा ने थाकी बहन मनसुनी रो स्नेह भरो राम राम सा। और मधुबहन थाने भी खूब खूब राम राम
2: राम राम राम राम मनसुनी भाई सा। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में सुनवाला सगला करसा भाई बहना ने और दूर दराज गांव ढाणी में चौपाल सुनती सगली सखी सहेला ने एक बार रोजू मधु नायक रो खूब मोहनो मोकड़ो राम राम सा। और मनसुनी भाई सा आपा बार खबरा सुनिया तो भाई जो आबाड़ा जो दिन है दिन में बिरखा का थोड़ा संकेत मिला है कि बिरखा होबा की संभावना है। तो जब बिरखा होबा की संभावना है और टाइम भी देखो चौमासा रू है बिरखा रू है तो 80 टाइम पर आपा ने जो सबसे पहली काम करना चाहिए जी भाई जल है तो कल है यानी कि जल जो है वो अमृत के समान है। तो आपा ने जो अपना बावड़ी है जो अपना टाका है जो अपना कुआ है बाकी साफ सफाई कर लेनी चाहिए है ना जो भी अपना पौंड है जो आप जिम आपा बिरखा जल को संरक्षण आपा कर सका तो आपने यह चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप बिरखा को जल है मैंने ज्यादा से ज्यादा कहीं संरक्षित करवा कहीं संचित भी न करा।
1: घनी मोटी लेकिन घनी जरूरी बात मधुबहन किया हो कि देखो आपने कही है कि एक तो आपने प्रदेश में दिया ही आप देखा तो बिरखा दिन पर दिन कम हो रही है सा है ना तो बिरखा एक तो कम हो गए दीपे आप भी पानी ने यही बह जा वो देवा फिर भी पाछे आप कहवा कि अजी साहब मां को तो ये बार फसल ही चौकी को क्योंकि बिरखा ही कम पड़ी सा मतलब पानी की कमी रही सा तो यो जो भूमिगत जल स्तर है यो दिन पर दिन नीचे ई वास्ते ही गिरते जा रही है मधु बहन की आपा जो आपने बिरखा हुआ है विकी पानी रो आपो संचय कराई को नहीं सा
2: मतलब केवा को मतलब यह है कि आपने जो राजस्थान प्रदेश है ना तो बिरखा ने लेर जो प्रदेश की जो स्थिति है ना हमेशा विषम परिस्थिति में रही है यानी कि कई बार जब जरूरत नहीं हो तो ज्यादा हो जाए जरूरत हो बीटम बरसे ही को नहीं सुखों से रह जावे तो यह जो विषम परिस्थिति आया तो राजस्थान आपने यह विषम परिस्थिति को हमेशा ही सामने कर रहे है और इसको सीधा सीधा असर जो है आपने किसान पर पड़े हैं खासतौर से है ना क्योंकि वही सबसे ज्यादा खेती बाड़ी और किसान ही प्रभावित हो गए हैं।
1: तो आपने काश्तकार भैया ने बहना ने यो सीख अबार सूही लेनी होली यो संकल्प लेनो होलो कि आपने बड़का जी परंपरागत तरीका सु आपने संस्कृति में पानी ने धरोहर भी को संचय करे हा वशी ही प्राकृतिक आपने जो पुरानी पारंपरिक जो परंपरावा है वाने आपने पुनर्जागृत करनो है सा और माँ को अनुसरण कर आपने आपने जो कुआ बावड़ी बार के बताया ना सा टाका है माँ की सबकी साफ सफाई कर वाने चोखू तरिया अपने गांव वाले तालाब में पानी बरखा पड़ता ही आ जावे भूजावे लबालब ऐसी व्यवस्था आपने अबार ही देख लेनी है सा।
2: और जो कार्यक्रम में सुन रहे हैं मान लो आप जो शहरी क्षेत्र में रहे वहाँ तो आपने आपने जो बिरखा को पानी जो छत पर आवे है तो छत की सफाई कर लिया मान लो और एक पाइपलाइन का माध्यम से आप कोई टाका में या जो भूमिगत टैंक हो गए है जिनमें अगर आप बिरखा को पानी जो है उनको संचय कर लिया तो यह बहुत चौकी बात हो गए तो सब में ऐसी व्यवस्था आपका घर में करनी चाहिए।
1: रेन वाटर हैवेसिंग सिस्टम की परियोजना ने कहे है जिन्हें आपा अपना जो शहर में रह बड़ा काश्कार भाई या सुनबाड़ा श्रोतागण है इन्हें उपयोग कर आपने जो पड़बाली बरखा है जो छत पे बह बड़ो है जो आपने घर की गलिया में नाड़िया में बह जावे पानी बीने भी आपा एक जगह संचय कर बाद में मुसीबत रे टेम में भी को उपयोग कर सका।
2: तो मुसीबत की टाइम में आप जी बचत करा हूँ पैसा की भी है आपने पानी की बचत करनी है और यह बचत इतनी चौकी जानकारी जब आप कसा भाई बहना के साथ करा हाँ तो कार्यक्रम में थोड़ी आगे बढ़ और एक और चौको से कोई गीत सुनाओ तो यह जानकारी थोड़ी चौकी तरह समझ में आती
1: मधुबन में था तो इशारो समझ गया सा तो मैं ले बैठा हाँ तो सगड़ा लड़मिल आपा सुना
2: चलो सर

और मैं साथ न रूसा।

ಬಾಗಿ ನಂದರಾಗಿ ಬಾಗಿನ ತೋಟ ನೀ ಉಡಾಲಿ ಲಾಲಾದೆ ಮರಿನ ಕೂಡ

0: ਕਦੀ ਨੜਦਰਾ ਦਿਆ ਨਾ ਵਾਗਰਾ ਛੋਟਾ ਨੀ ਮੁਰਾਦੀ ਲਾਲਾ આજના ચોખા લોકગીત કે પાછે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા રહ્યા આપા ચાલા જાણકારી વિયોર તો આપણા પ્રભુભાઈ વિશેષજ્ઞને લે સ્ટુડિયોમાં રાત તકર્યા હૈ સમરાવા માને બાગડોર ઓર સુનાયા જાણકારી તો લ્યો સા જલમે સલા જાણકારી
1: પ્રોગ્રામ બના ચુકે હૈ સત્યનારાયણ ચૌધરી જી આપ ચીફ ટ્રેનર હૈ IHITC દુર્ગાપુરા જયપુર કે હૈને ઓર આજ આપા આસુ જાણકારી લેવલા મશરૂમ ઉત્પાદન કે બારે મે तो सबसे पहले तो सत्यनारायण जी थको स्टूडियो में बड़ो बड़ो स्वागत है राम राम सा
2: राम राम सा
1: और जी अगर आप विषय है मशरूम उत्पादन तो सबसे पहले तो थसो वही जानना चाहूंगा कि मशरूम कहीं हुए हैं
2: देखिए साहब मशरूम का मतलब है कि एक फपूंद या इंग्लिश में बोलते हैं तो फंगस
1: जी
2: जैसे अपने गांव के अंदर जो है अचार डालते हैं उसके अंदर तेल भी डाला जाता है तेल का स्तर नीचे चला जाता है और वो अचार में जो कैरियां डाली थी वो ऊपर रह जाती है तो उनके ऊपर एक सफेद सफेद सी ग्रोथ आ जाती है वृद्धि आ जाती है
1: जी।
2: वो फंगस ही है ये फंगस क्या है कि खुद खाना नहीं बनाती क्योंकि इसमें पत्तियां वगैरह होती नहीं है केवल एक धागा ही रहता है उस धागे में इसकी जड़ें रहती है वो ही सब कुछ करती है इसका काम तो ये फफूंद वैसे तो गंदा है वैसे बीमारियां फैलाता है लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने इसके अच्छे गुणों को पकड़ करके अपने को कहा है कि आप इस मशरूम को उगाओ और ये जो मशरूम आपको जो है जैसे डायबिटीज से बचाएगा कैंसर से बचाएगा किसी के कब्जे रोग है तो उससे बचाएगा
1: जी।
2: तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मशरूम एक फंगस या फफूंद है
1: तो मशरूम की खेती करवा की कहीं आवश्यकता है क्यों ये किसान भाई ने मशरूम की खेती करनी चाहिए
2: अब देखिए जी क्या है कि टाइम आ रहा है कि जमीन कम पड़ती जा रही है प्रति व्यक्ति जो है जमीन

0: ज्योत का आकार जो कम होता जा रहा है, पानी की भी कमी होती जा रही है, और इस वातावरण का पता नहीं कब क्या हो जाए
1: जी।
0: फिर क्या है कि आजकल के जो युवा है वो खेती नहीं करना चाहते, उनको धूप लगती है, तो उनको हम जो उनकी खेती की पूर्ति करना चाहें, धूप से बचाना चाहें, तो ये इंडोर कल्टीवेशन में आता है। तो हम अपने घर के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर खेती कर सकते हैं, या खेत में जो है झोपड़ी सरकंडे की बनवा करके उसके अंदर खेती कर लें
1: जी।
0: तो वो बच्चे उसमें खेती कर लेंगे, अपने जो है आय का जरिया इसको बना लेंगे, और जो है इसमें जो अच्छे गुण है उनको अपने लोगों तक पहुंचा कर कुपोषण से भी उनको बचाएंगे। तो इन तीनों चीजों की वजह से पानी कम पड़ रहा है, जमीन कम होती जा रही है, वातावरण का कोई पता नहीं, तो प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए थोड़ी सी जगह में थोड़े से पानी के अंदर, पानी चाहे खराब क्वालिटी का भी हो, हम मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं
1: जी। और आप बात करें अपने राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के मायने मशरूम की खेती कोई किसान भाई कर रहा है के बार?
0: हाँ जी, अलग अलग काश्तकार है। जैसे अपने सिक्कर की बात करें तो मोटाराम जी शर्मा करके नानी गांव से हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो है एक चौधरी साहब है अपने भंकरोटा साइड में, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कई दूसरे और लोग भी है, उदयपुर वाला डिवीजन है उसमें भी कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग काश्तकार है। कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो अपने जंगल के अंदर नेचुरली उग जाती है, जो खाने योग्य है उसको इकट्ठा करके बेच करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर तीन प्रकार का मशरूम अपन जो है खेती में लेते हैं। उसमें पहला जैसे साल भर के लिए करना चाहते हैं तो वो ढींगरी मशरूम है, इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है
1: जी।
0: और इनके भी वैज्ञानिक नाम होते हैं, तो प्लोरोटा सेटिनोप्लेट्स पीसी जिसको बोलते हैं वो इसका वैज्ञानिक नाम है। ये ले सकते हैं, पूरी साल भर कर सकते हैं। दूसरा मशरूम अपन जो है सर्दियों के अंदर लेना चाहते हैं तो उसमें बटन मशरूम है, और बटन मशरूम का नाम जैसे वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस है। और ऐसे ही हम दोनों का टेस्ट गर्मी के टाइम में लेना चाहते हैं तो तीसरा मशरूम है जिसको दूध छाता बोला जाता है, सफेद कलर का ही होता है तीनों मशरूम। दूध छाता को हम साइंटिफिक नाम लेते हैं तो केलोसाइबा इंडिका के नाम से जाना जाता है। तीनों को अलग अलग टाइम पर उगा करके अच्छा सा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, कुपोषण से भी बच सकते हैं।
1: कोई भी किसान भाई जब मशरूम की खेती करना चाहे तो बिन उगावा की कई विधि है, कौन कौन सी बातों को बिन ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, यदि ये किसान कोई भी शुरुआत करता है मशरूम से तो सबसे पहले उसको ढींगरी मशरूम पर जाना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि इस ढींगरी मशरूम को जिसको इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है, हम प्रायोगिक प्रैक्टिकल मशरूम बोलते हैं, और इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक का एक ड्रम लेते हैं जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए इस कैपेसिटी वाला
1: जी।
0: और फिर जो है 20 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं। हमने एक ड्रम लिया, उसमें 200 लीटर पानी आने वाले में 100 लीटर ही केवल पानी भरा, आधा खाली रखा आधा भर दिया, उसमें 20 किलो गेहूं का भूसा हमने डाला, और फिर तीन दवाइयां ली। इस भूसे के अंदर हो सकता है कोई बीमारी हो तो उससे बचने के लिए बाविस्टीन ले लिया, इसमें कोई कीड़ा हो उससे बचने के लिए इमिडा क्लोरपिड ले लिया, और इसको साफ सुथरा करना चाहते हैं तो फॉर्मलडिहाइड नाम की दवा जिसको फॉर्मलिन शॉर्ट में बोलते हैं वो हम कुछ निश्चित मात्रा में लेते हैं। जैसे 100 लीटर पानी के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन करें तो 5 ग्राम बाविस्टीन होगा, 25 ml अपना इमिडा क्लोरपिड होगा, 250 ml अपना फॉर्मलडिहाइड होगा। वो एक बाल्टी में लेके पानी में घोल करके जो हमने पानी ड्रम में भर दिया था, 20 किलो भूसा भर दिया था उस ड्रम के ऊपर घुमाते हुए शाम के टाइम में ये काम करते हैं। दूसरे दिन जो है ये इस ड्रम को उस जगह पर जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ पर एक ढलान वाली जगह बनाकर इसमें से भूसे को बाहर निकालते हैं, एक घंटे में पानी निथर जाता है। फिर इस गीले भूसे को 6-6 किलो की ढेरियां बनाकर के बीज डाल करके थैलियां भर देते हैं, मशरूम उत्पादन करते हैं
1: जी। अगर थे बात करिए कि कोई किसान भाई मशरूम उत्पादन लेना चाहे तो सबसे पहले भी ढींगरी मशरूम लेनी चाहिए
0: जी। ढींगरी मशरूम से शुरुआत कर देना।
1: तो ढींगरी मशरूम कोई किसान भाई उत्पादन लेवे तो बिन कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? बी के लिए तापमान क्या को होना चाहिए या और भी कोई बात हो तो किसान मैन बताओ।
0: देखो, ढींगरी मशरूम या कोई दूसरा मशरूम हो उसको शुरुआत करते हैं तो ध्यान ये रखे कि कहीं पर भी कंटामिनेशन नहीं आए, इसके लिए वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे
1: जी।
0: जिस ड्रम में भर रहा है पानी उसके अंदर जो है साफ सुथरा हो, वो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई गंदगी नहीं हो। जो भूसा ले रहा है उसको वो उपचारित करे, जिस टब से वो भूसे को तोल के डाल रहा है उस टब को भी जो है स्पीड से साफ करे, छोटा टब जिसमें वो बीज लेना चाहता है उसको भी जो है स्पीड से साफ करे, अपने हाथों को स्पीड से साफ करे। जिस प्लास्टिक की सीट के ऊपर 6-6 किलो की ढेरियां बनाना चाह रहा है उस प्लास्टिक की सीट को पहले जो है स्पीड के रुई का फोया बनाकर उससे साफ करे। ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वो काम करे तो उसके कंटामिनेशन के चांसेज ही नहीं रहेंगे। फिर जब वो 20 दिन का टाइम हो जाता है बैग के अंदर मशरूम

0: आ जाता है और जब वो बैग को खोलता है तब वहां पर ध्यान ये रखिए कि बैग को खोलते टाइम भी प्लास्टिक का सीट बिछा करके उसको स्पीड के धोएं से साफ करके हाथ साफ करके फिर बैग को खोले और बैग को खोलने के बाद में अब रैक पर रख दे पानी पिलाता रहे। अब एक दिक्कत हो सकती है कि ये भूसा जो था चारों तरफ से उस फंगस के माइसीलिया से उस जाल से पकड़ में आ गया था तो वहां पर चिकनाई आ जाती है तो पानी ठहरता नहीं है। किसानों का क्वेश्चन आता है सर हमारे बैग में जो है एक में मशरूम नहीं आ रहा और दूसरों में जो मशरूम आ रहा है तो किसान उठा करके देखे कि जो बैग हल्का है तो इसका मतलब वहां अंदर पानी नहीं गया। तो एक टब लेवे और अपने बैग को उस टब में रख करके पानी को अंदर जाने दे, जैसे ही पानी जाएगा दूसरे नहीं तीसरे दिन तो बहुत शानदार मशरूम निकलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए काम करे, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
1: और बात आप अगर सिंचाई के विषय में तो सिंचाई को कतो ध्यान रखना चाहिए, अगर ढींगरी मशरूम कोई किसान भाई ले रखी है कद कद भी सिंचाई करनी चाहिए या सिंचाई के संदर्भ में और कहीं बात है जगह कोई किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ देखिए साहब ऐसा है कि जो भी मशरूम प्रोडक्शन वो लेगा किसी भी प्रकार का चाहे बटन ढींगरी दूध छता कोई भी लो हमेशा वो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करे। हार्वेस्टिंग के बाद में उस कमरे में झोपड़ी में जो भी उसने बना रखा जहां प्रोडक्शन ले रहा उत्पादन कक्ष है उसकी साफ सफाई करे सही तरीके से
1: जी।
0: और उसके बाद में सिंचाई करे, सिंचाई में यही ध्यान रखे कि फूट स्प्रे पंप उसके पास में होना चाहिए। कभी कभार किसान क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं और पाइप से पानी पिलाने लग जाते हैं, उसकी धार इतनी तेज प्रेशर से आती है कि भूसा बीज के साथ में ही उखड़ जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए नोजल को ऊपर ही ऊपर वाले बैगू से स्टार्ट करें और घुमाते हुए ऊपर नीचे नोजल को घुमाते हुए वो नीचे तक लेकर के आए, क्योंकि इसमें सेल्फ में कल्टीवेशन होता है यानी पहला रेक होगा तो उसमें नीचे एक सेल्फ होगा वहां बैगू की लाइन होगी फिर ऊपर बैगू की लाइन होगी फिर बैगू की लाइन फिर ऐसे चार परत के अंदर जो है बैग अलग अलग जगह रखे जाएंगे तो ऊपर से वो करता हुआ आए नीचे आए और लास्ट में पानी की बाल्टी भर के जो उत्पादन कक्ष है उसमें छोड़ दे तो इससे बहुत शानदार तो टेम्परेचर बनेगा ह्यूमिडिटी बनेगी और अच्छा सा उत्पादन आएगा
1: जी। और कत्ता टाइम के बाद के मायने मशरूम की खेती है जी किसान ने मिल जावे है
0: जैसे ढींगरी मशरूम की अपन बात करें दूध छाता की बात करें तो किसान क्या है कि भूसे को उपचारित करता है, उपचारित करके फिर थैलियां भरता तो थैलियां लगभग 20 दिन पर खोल दी जाती है तो 20-22 दिन से जो है वहां से प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है
1: जी।
0: वहां से लेकर के कंटिन्यू फिर वो 2-2.5 महीने तक लगातार चलेगा। और इसी प्रकार से यदि बटन मशरूम उगारा है तो कंपोस्ट बनेगा, कंपोस्ट बनने में 27 दिन का टाइम लग जाएगा, लगभग 1 महीना यहाँ निकल गया, फिर वो बिजाई करेगा तो लगभग 15-1 दिन के अंदर उसके वो जो है मशरूम की शुरुआत होगी और वो केसिंग लेयर करेगा वो 4-5 दिन में तब जाकर के मशरूम आना स्टार्ट होगा। तो ऐसे जो है तीन मशरूम का थोड़ा सा अलग अलग आने का तरीका रहता है लेकिन लगभग हम मान सकते हैं कि 1 महीना से लेकर के लगभग 1.5 महीना तक जो मशरूम आना शुरू हो जाता है तीनों के अंदर ही
1: जी। जखा किसान भाई मशरूम उगाना चाहे खेती लेना चाहे मशरूम की तो सासू बुढ़ी माँ की समस्या आएगा बीज खटो खरीदे तो बीज के संदर्भ में किसान भाई जानना चाहोगे कि मन बढ़िया बीज खटे मिल सके है और खटू के खरीद यार बढ़िया मशरूम की खेती ले सके है।
0: हाँ जी देखिए बीज मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, गेहूं या ज्वार के दानों के ऊपर कल्चर डाल करके बीज तैयार किया जाता है और इसका ये स्पान जो बीज है वो 100 रुपए किलो आता है। किसान अपने यदि उदयपुर डिवीजन से है तो राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके अंदर अपना एक मशरूम यूनिट है वहां से ले सकते हैं। अपने सीकर झुंझुनू जयपुर टोंक अलवर ये इधर वाले जो लोग हैं तो अपने जयपुर दुर्गापुरा से बीज को खरीद सकते हैं। यदि और किसी प्राइवेट से लेना चाहते हैं तो उनके भी नंबर अपने पास रहते हैं, जो भी कोई किसान इस टाइप की बात पूछता है तो आप या मेरे को कॉल कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूट में फोन कर सकता है, उनको नंबर प्रोवाइड अपन करवा देंगे, 100 रुपए किलो बीज उनको मिल जाएगा।
1: और कोई किसान भाई घर बीज तैयार करना चाहे तो वो भी संभव है सर?
0: हाँ ये भी संभव है लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ औजारों की उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उपकरण वर्ड बोलते हैं अपन, इनकी जरूरत पड़ती है जैसे ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार एयर फ्लो हुआ, बीओडी हुआ जिसको अपन फ्रिज बोल सकते हैं बीओडी को, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। थोड़े ये महंगे पड़ते हैं तो किसान नहीं खरीदता लेकिन मान लीजिए किसान को अवेलेबल हो जाते हैं तो कुछ नहीं गेहूं या ज्वार के दाने हैं उनको आधा पकाया जाता है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा मिलाया जाता है 2% के हिसाब से, फिर थैलियां या बोटलें भर दी जाती है, फिर जो कल्चर होता है उसको उसमें इनोकुलेट या निवेशित किया जाता है, फिर जो है लगभग 12-15 दिन के अंदर जो है वो बीज बन जाता है और उसको बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 किलो बीज है तो वो 4 किलो बीज के अंदर

0: कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक किलो बीज का मतलब एक किलो गेहूं है, चार किलो गेहूं में कन्वर्ट किया जा सकता है बीज बना करके। तो ये भी एक मुनाफे का सौदा है, बीज भी लोग बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई और बहनों, सत्यनारायण चौधरी जी चीफ ट्रेनर IHITC दुर्गापुरा जयपुर से स्टूडियो में पधारिया और आज अपन जानकारी दी मशरूम उत्पादन के विषय में, थे स्टूडियो में पधारिया और मगा किसान भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपको बड़ो बड़ो धन्यवाद।
2: और घणो घणो धन्यवाद प्रभु भाई, आपको भी कितना चोखा चोखा प्रश्न पूछर आप सगड़ा श्रोताओं तय इतनी महती जानकारी पूर्ति कराया कि मशरूम की जो खेती है वा कीकर वगैरह उन्नत खेती, और देखो मशरूम तो जो खाबाड़ा है वा कटाई भी लाभदायक हो है स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से। तो प्रभु भाई ने देवा धन्यवाद और सागी डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी जी ने देवा धन्यवाद और धन्यवाद स्वरूप आप रणमिला सुनाई चौको सो गीत, क्योंकि गर्मी को टाइम है तो आपने पुदीना को एक गीत सुनाऊं और उसे पहले सुनना ये संदेश।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो DAP का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
4: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
1: लूड़ जाई रे हरिया पोदीना, चुक जाई रे हरिया पोदीना, बहुत ही चौकसई वालों गीत आप रणवीर सगला सुनिया। और भाई बातें करता तका देखो टाइम को पता ही होने लगे, और खेती बाड़ी को जो टाइम है वो अठे ही पूरा होते जा रहे है। तो आपकी बहन मधु नायक मेहल
2: मनस्विनी ने जो विदा चला करा राम राम सा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मित्रों, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गाने के बोल लिखे असद भोपाली ने, संगीत था राम लक्ष्मण का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी चिपक अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है साजन। गाने के कलाकार हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, गाने के बोल लिखे समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

cousin. मुझे से ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुनाना एसपी बारा सुब्रमण्यम की आवाज में। गाने के बोल लिखे समीर ने, संगीत दिया नदीम श्रवण ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुनिए। गीत निर्देशन है असद भोपाली का, संगीत दिया राम लक्ष्मण ने।

मैंने प्यार किया। फिल्म से ये प्यारा सा गीत आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गाने की बोल लिखी असद भोपाली ने, संगीत निर्देशन था राम लक्ष्मण का। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म है दिल चाहता है। कलाकार हैं श्रीनिवास महादेवन, अन्य साथियों की आवाज भी सुनिए। गीत निर्देशन है जावेद अख्तर का, संगीत किया शंकर एहसान राय ने।

नहीं चाहता है फिल्म से ही ये गीत आपने सुना। श्रीनिवास महादेवन अन्य की आवाज ने गीतबद्ध किया, जावेद अख्तर ने संगीत निर्देशन था शंकर असामलय का। श्रोतम कार्यक्रम का अब अगला अंतिम गाना सुनिए। फिल्म है स्वदेश, कलाकार अंकल याग्निक, गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया ए आर रहमान ने।

फिल्म स्वदेश करने का नाम सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन था एआर रहमान का, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है और अब से बस थोड़ी देर में पहले सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा, 9:00 का समय रहेगा न्यूज़ @9 का, और 9:15 पर सुनिए उर्दू में समाचार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान के हर अपडेट के साथ आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां आज हमारे साथ है फुटबॉल का फीवर, बैडमिंटन कोर्ट से आती इतिहास की दस्तक और नॉर्थ के मैदान पर जारी रनों की बारिश। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। रात 12:30 बजे होंगी दोनों टीमें आमने सामने। इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में फ्रांस को 6-4 से हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर जारी। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जापान ओपन सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के खुमार के साथ, जो इस समय पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है। और फुटबॉल फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाना है। जानते हैं फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबले से पहले किसका पलड़ा कितना भारी है।

न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला फैसला करेगा कि फीफा विश्व कप का विजेता कौन होगा। एक तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर 1962 के इतिहास को दोहराना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर स्पेन 2010 के करिश्मा को दोहराकर एक बार फिर खिताब अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीद अपने स्टार खिलाड़ी और इस विश्व

0: खिलाड़ी और इस विश्व कप में 8 गोल कर चुके लियोनेल मेसी से होंगी। अर्जेंटीना ने इस वर्ष कई बार अंतिम क्षणों में कमबैक की बदौलत मुकाबले का रुख बदला है, जैसा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में देखने को भी मिला, जहां पूरे मैच में पीछे चल रही अर्जेंटीना ने अंतिम मिनटों में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया था। जूलियन अल्वारेज, लुटारो मार्टिनेज और मैक एलिस्टर टीम की मजबूत कड़ी है। मिडफील्ड और डिफेंस में एंजो फर्नांडिस, मैक एलिस्टर, पेरेडेस और एमिलियानो मार्टिनेज टीम की ताकत है। वहीं स्पेन मजबूत डिफेंस और पोजीशन गेम से दूसरा खिताब हासिल करना चाहेगा। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस की मजबूत टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम के डिफेंस में उनाई सिमोन और रॉड्री जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं। लैमिन यमल, निको विलियम्स, मिकेल ओयारज़ाबल और फैबियन रुइज से भी स्पेन को फाइनल मुकाबले में काफी उम्मीद होंगी। ऐसे में इस खिताबी मुकाबले में इन दोनों डिजर्विंग फाइनलिस्ट टीम के बीच मैदान पर जोश, जुनून, कौशल और रणनीति का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जो तय करेगा कि फुटबॉल का नया विश्व विजेता कौन बनने जा रहा है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: तो आज कागज पे कौन सी टीम कितनी मजबूत है, इससे अधिक फैसला इस बात से होगा कि मैदान पर वो आखिरी के 90 मिनट किस टीम के साथ होते हैं। और कहा जाता है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो देखना होगा कि आज विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 टीमें सामने हैं और आज रात के बाद विश्व कप का नया विजेता कौन होगा। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
2: फुटबॉल प्रेमियों को बीती रात एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिला, जहां तीसरे स्थान के लिए खेलते हुए इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। 1982 के बाद ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी एक मुकाबले में 10 गोल हुए हों। इंग्लैंड शुरुआत से ही हावी नजर आई। मैच के तीसरे ही मिनट में डिक्लान राइस ने लंबी दूरी से शॉट लगाते हुए पहला गोल किया। इसके बाद मैच के 18वें मिनट में एजरी कौनसा ने राइस के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को 2-0 कर दिया। बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए मैच का तीसरा गोल किया, जबकि 43वें मिनट में उन्होंने एक और गोल दागते हुए पहले हाफ में ही इंग्लैंड की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने दमदार वापसी की। 48वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए मुकाबले का पहला गोल दागा। इसके बाद 58वें मिनट में बारकोला ने एक और गोल करते हुए स्कोर को 4-2 पर ला दिया। 9 मिनट बाद ही एम्बाप्पे ने एक और गोल करते हुए इंग्लैंड की बढ़त को और कम कर दिया। अब बारी थी इंग्लैंड के पलटवार की, जिसने मैच के अंतिम पलों में एक बार फिर दमदार खेल दिखाया। 87वें मिनट में हाथ आई पेनल्टी में बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए 5वां गोल किया। हालांकि फ्रांस के लिए उस्मान जेम्बेल ने इंजरी टाइम में गोल करते हुए स्कोर 5-4 कर दिया। इंजरी टाइम के 8वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से 6ठा गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी। 1966 में फीफा विश्व कप का खिताब जीतने के बाद ये टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो शायद शुरुआत के 102 मुकाबलों में जहां पे गोल की कुछ कमी रही होगी, वो तीसरे स्थान के लिए खेले गए इस मैच में पूरी होती हुई नजर आई। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, जो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया।
3: Being part of Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title across any of the disciplines here at the Japan Open.
4: स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को हराकर न सिर्फ ये खिताब अपने नाम किया, साथ ही 2 साल जारी बीडब्ल्यूएफ टूर खिताब का सूखा भी समाप्त किया। ये दिसंबर 2024 में सैयद मोदी टूर्नामेंट जीतने के बाद सिंधु का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है। सिंधु ने टोक्यो मेट्रोपोलिटन जिम्नेजियम में 4 बार

0: चैंपियन यामागुची को 21-17 से हराया। इसके साथ ही वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु को शानदार प्रदर्शन के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ मिला। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 5 हान यू को हराया, तो क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल में उनकी विपक्षी खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से मैच से हट गई। सिंधु ने फाइनल मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की और दोनों गेम में बढ़त बनाने की कोशिश में लगी रही। हालांकि कई बार यामागुची ने स्कोर बराबर किया, लेकिन दोनों गेम के अंतिम चरणों में सिंधु ने शानदार धैर्य और आक्रमण का मिश्रण दिखाते हुए 21-17 से मुकाबला और खिताब अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित राजनीति और खेल के क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने सिंधु को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन इतिहास में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि को जोड़ दिया है और 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सिंधु ने कोई 750 स्केल के ऊपर का टूर्नामेंट जीता है। और अब रुख करते हैं लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान का, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 141 रन की एक शानदार शतकीय पारी खेली। और अब इस श्रृंखला पे और इस मैच पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, इस समय क्या ताजा अपडेट है भारतीय पारी का इतने बड़े दर्शक के सामने?
2: शक्ति, अभी भारतीय टीम का 10वां ओवर चल रहा है और 49 रन पर पारी पहुंच चुकी है बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं शुभमन गिल 36 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो बहुत ही सधी हुई शुरुआत हुई है भारतीय टीम के लिए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि काफी धीमी शुरुआत है, लेकिन उसको कवर अप कर लिया गया है। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड की पारी की, तो भारत को एक बहुत विशालकाय लक्ष्य उन्होंने दिया है 388 रनों का, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर्स ने। बेन डकेट ने 141 रन और जेकब बेथल ने 91 रन की पारी खेली। साथ ही उन लोगों ने 192 रन की पार्टनरशिप करी और उसके बाद बेन डकेट और जो रूट ने भी 101 रनों की साझेदारी करी और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन बनाकर मैच का रुख जो है इंग्लैंड के तरफ कर दिया और रूट के साथ मिलकर 19 गेंदों पर 63 रनों की बहुत ही तेज तर्रार साझेदारी करी। अगर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो काफी औसतन प्रदर्शन रहा। गुरनूर ब्रार ने 10 ओवर में 97 रन आज लुटाए, वहीं अर्शदीप ने 10 ओवर में 72, प्रसिद्ध ने 10 ओवर में 69 और अक्षर पटेल ने सबसे किफायती गेंदबाजी करी है आज 10 ओवर में 61 रन। सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को ही मिले हैं। लेकिन आज का जो ये मुकाबला है, इतना बड़ा लक्ष्य है, ये डिसाइड करेगा कि ये सीरीज किसके नाम होंगी, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में एक मुकाबला भारत के नाम और एक मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो ये सीरीज डिसाइडर मुकाबला होगा। लेकिन लॉर्ड्स का मैदान ऐसा मैदान है जहां पर रिकॉर्ड्स टूटते हैं, नए कीर्तिमान बनते हैं। आज भी कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं, उन पर भी नजर डालें विशेष एक बार।
2: अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बेन डकेट ने जो 141 रन की पारी खेली है, वो लॉर्ड्स मैदान पर सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया है। उन्होंने विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है जो उन्होंने 1979 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था 138 रनों का, और ये हाईएस्ट ओडीआई टोटल भी है। इसी के साथ ये भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ में 400वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। भारत के लिए श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद अब सीधा 27 सितंबर को भारत वेस्टइंडीज से भिड़ेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं और एक और रिकॉर्ड भारत को तोड़ना होगा अगर ये श्रृंखला और मुकाबला जीतनी है, और वो रिकॉर्ड होगा 388 रन का विशालकाय लक्ष्य चेस करते हुए हासिल करना। देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
3: आज संडे ऑन साइकिल के 82nd एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
1: ये 82वीं कड़ी थी इस कार्यक्रम की और जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है देश

0: रफ्तार, इसका दायरा हर रविवार फैलता है। लोग सुबह 4 बजे 5 बजे अपने घरों से निकलते हैं, अपनी वीकेंड की नींद को छोड़कर के, और साइकिल चलाते हैं, दुनिया को और देश को एक संदेश देते हैं फिट रहने का। इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी देश को बताए।
1: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग से आप अपने स्वयं को फिट रख सकते हो, आप पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हो, आप देश का तेल को बचा सकते हो और आप स्वयं फिट भी रह सकते हो। एक साइकिलिंग से इतना फायदा होने से और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के ओर प्रेरित हो रहा है और अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं।
0: तो हेल्थ के इस रेजोल्यूशन से निकलता हुआ पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। और अब रुक करते हैं बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता का, जहां मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन काजल ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में काजल ने अमेरिका की डायमंड प्रोसियस गिलफेड को हराया। वहीं भारत ने 53 किलो और 57 किलो वर्ग में 2 रजत पदक भी अपने नाम किए हैं। अंतिम पंगाल को 93 किलो के फाइनल में चोट के कारण स्वीडन की अम्मा जोना डेनिस मार्ग्रीन से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं 57 किलो वर्ग के फाइनल मुकाबले में नेहा शर्मा को चीन की कॉक्सिन होंग के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था। निशु ने 53 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में 12 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी अब ग्रीको रोमन शैली में हिस्सा ले रहे हैं, जहां भारत के लिए ललित से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने लगभग ब्रॉन्ज मेडल के मैच में अपना स्थान पक्का कर लिया है, हालांकि वो फाइनल की दौड़ से चूक गए। और इसके पहले दिन अमन शरावत ने भारत के लिए शानदार स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीता था, जो कि भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं और भारत को आगे आने वाली बड़ी चैंपियनशिप में अमन से काफी उम्मीदें होने वाली हैं। और अब चेस का रुख कर लेते हैं, जहां शतरंज में कोयंबटूर के वीएस रतनवेल ने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2000 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करते हुए देश के 99वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। भारत अपने 100 ग्रैंड मास्टर से महज एक कदम दूर है। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है कार्यक्रम के अंत का, लेकिन चलते चलते आपको एक बार वापस नॉर्थ पर खेले जा रहे मैच का स्कोर बता देते हैं, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर और 2 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 50 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 24 और कप्तान शुभमन गिल 26 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्वभर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड

0: नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुनेंगे।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड किया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैव टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउड द हाउस टू वर्क।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगनो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई।

0: ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: इट इज द फर्स्ट एवर विजिट बाई एनी इंडियन प्रेसिडेंट टू मोल्दोवा।
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होमस्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तराओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया।

0: फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 9 बजने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म बनवास से, आवाज विशाल मिश्रा और पलक मुछाल की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।

0: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया,
0: एक और आ गया।
1: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे।

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म रांझना से, आवाजें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
3: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे।

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

श्रोताएं गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं नमस्कार।
1: आप यहाँ आए इसलिए?
0: हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनकी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से।

से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

फिल्मी दुनिया की चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

0: पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।
1: तूफान के सुनकर दर्द हमारी सीने।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देवानंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देवानंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देवानंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द न आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देवानंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगे।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते।

0: नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।
1: लिखे जो खरा।

तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र न करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी, मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

गांव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

0: नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।
1: पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं।
0: हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।
2: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है,

से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

0: ನನ್ನ ತನ್ನಲೇಕ್ಕೆ ಲೋಟ, ನಮ್ಮನ್ನಲೇಕ್ಕೆ ಲೋಟ।
1: नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाय फिल्म कोहिनूर के इस गीत के साथ। शब्द लेखन शकील बदायूं ने कहा, संगीत नौशाद का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म अनामिका का ये गीत। शब्द लेकर मजरूह सुल्तानपुरी का है संगीत, आर डी वर्मन का।

आपने किशोर कुमार को फिल्म अनामिका में सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत। शब्द लेकर नजर सुल्तानपुरी का संगीत शंकर जयकिशन का।

आपने भूपेंद्र को फिल्म मौसम में सुना। शब्द रेखन गुलजार का था, संगीत था मदन मोहन का। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म। फिल्म पाकिजा का ये गीत कैफ भोपाली का लिखा है गीत, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली पेशकश में लता मंगेशकर और मुकेश का गाया फिल्म कभी कभी का ये गीत। साहिल लुधियानवी का लिखा है गीत है संगीत खयाम का।

आपने लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म कभी कभी में सुना। आइए सुनते हैं मुकेश और साथियों का गाया फिल्म धर्म करम का ये गीत। शब्द लेखन नजरुल सुल्तानपुरी का है संगीत आर डी वर्मन का।

आपने फिल्म धर्म कर्म का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं योगेश की रचना को सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म अन्नदाता से। इस गीत को आज ही मुकेश ने

अभी आपने मुकेश को फिल्म अन्नदाता में सुना। आइए अब सुनते हैं यसुदास का गाया फिल्म बावरी का ये गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। शब्द लेखन संतोष आनंद का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने येसुदास को फिल्म सावन को आने दो में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में लता मंगेशकर का गाया फिल्म पूनम की रात का ये गीत, शब्द रचना शैलेंद्र के, संगीत सलील चौधरी का।

लता मंगेशकर के फिल्म पूनम के रात की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही खत्म होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सोन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्णदेव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और

0: में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मून जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।